0: अने नाम मालूम है बस नगोगिरा आस्किप सोने अब आज हम आगस्त तू के दाब का सीट का सीट केमी आगस्त
1: तू के दाब का सीट केमी दना शीला जेबे अने नाम रिक्की ते जेसाम बाय आज हम आगस्त तू के
2: दाब का सीट का सीट
3: Ilatilawe, Ao, Anue, and then on two Miss Collects on Avatama Agassi, Kazi, Kazi, Kemit and Akshila, Shila, Jebe.

अरे भी कोई भी क्या मोबर लागो मोबर सीखी कोई लागो अगर ये ची कबीसा इन ताई को शक मांगे रे ची कबीसा वाले ची नमाय ची तो निवेंदी अक्सलिंग के ता निवेंदी अगेन निवेंदी अक्सलिंग की शक 86,000 चुप्पा तेरा